हरिओं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्त्वं गीता गंगा च गायत्री सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवलयत्री संध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमाता चिदानंद भवग्नि भयनाशिनी वेरत्

एक बार बोलो श्री उमापति महादेव की, प्रिंस वर्षी वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, साधु के द्वंद्व सकल पंच की जय जय श्री।

नमस्ते बहनोर भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: इश्क वो ख्वाहिश है जिसमें सुकून का एहसास है, इश्क वो जज्बा है जिसकी खुशबू में प्यास है।

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति।
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Jason Kalu is on
0: 102.7 FM, रेडियो जागृति।

हनुमान ऐसे पायक जिनके औ संग लक्ष्मण से भाई जलती यगिन में कूद पड़ेगा को तिन गिन न खाए। अरे मेघनाथ ऐसा पुत्र हमारा और कुंभकर्ण ऐसा

घर घर धूम जो छाए, बाग भी बंस लंका को जारा, जा सागर तीर पूछ बुझाए। अब तू क्या दरे मदोदर रानी, पी हर दू पहचान, मैं लड़ने से

0: of Cura. Visit us on Facebook or call 663-4415.
1: What if I told you, you could get a large Pizza Hut pizza for just $75? Yes, $75. Right now, at the Hut, you can grab a large hand-tossed pizza in three of your favorite flavors, all for that unbeatable price. So whether you're feeding the family, linking up with friends, or just treating yourself, this is the kind of deal that just makes sense. Because when the pizza big and the price small, that is niceness. Available for delivery, dine-in or carry-out at Pizza Hut. Log in to our social pages and WhatsApp channel for details. Pizza Hut, feed good times.
2: Rampersad Medical Center Limited, located at 50 Mission Road in Freeport. Contact us at 673-0805 or you can call our hotline 673-2222. Email rampersadmedicalltd@yahoo.com.
3: Rickab Engineering Consultants Limited, number 5 Dean Street, St. Augustine, Trinidad and Tobago. Telephone 662-0793. Email rickabengineering@gmail.com.
4: Discover the vibrant world of Fab India Expo, your gateway to exquisite crafts, fashion and home decor. Dive into exclusive deals and experience the essence of India, all under one roof. Visit Fab India Expo opposite Medford Gas Station in Chaguanas and bring home something special today.
5: माँ तेरी ममता कितनी प्यारी कितना प्यार जगाती है ओ माँ योर मदरली अफेक्शन अवेकन्स द कॉर्ड्स ऑफ लव इन माय हार्ट फॉर योर लोटस फीट श्वास श्वास की रक्षा करती पग पग प्राण जगाती है इट प्रोटेक्ट्स एवरी ब्रेथ एंड एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ तू ऋषियों की रिद्धि सिद्धि तू ब्रह्मा की भक्ति माँ यू आर द मिस्टिक पावर ऑफ द ऋषिज एंड द डिवाइन एनर्जी ऑफ ब्रह्मा यू आर ऑल्सो द कॉन्सर्ट ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी एंड द शक्ति द पावर ऑफ लॉर्ड शिवा और हम्बल अदोरेशंस अगेन एंड अगेन टू योर लोटस फीट

0: Looking for something truly unique this season? Then you need to visit Fab India Expo, located opposite Medford Gas Station, Shagwana's. Brand new containers have just arrived, packed with one-of-a-kind garments you won't find anywhere else. Whether you're shopping for something stylish, traditional, or custom-made, we've got you covered with made-to-order pieces tailored just for you. And it doesn't stop there. Take a stroll through our full food court, offering delicious options for the entire family. From savory bites to sweet treats, there's something for everyone. Plus, don't miss our big sale on furniture. Upgrade your home with beautiful pieces at unbeatable prices. So come on down to the Fab India Expo, located opposite Medford Gas Station, Shagwana's, where culture, style and savings come together.
1: माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं। क्यों जा रहे हो?
2: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
3: अंत में आरंभ है।
2: एक और प्रेम है।
3: आरंभ में ये अंत।
2: और दूसरी ओर कर्तव्य।
4: मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा।
2: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा। हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, और सारे धर्म अधिकारी चुप रहे।
5: छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र।
2: तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी

जय एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो श्री आदि शक्ति नव दुर्गा माता की जय। प्रेम से बोलो श्री पवन सुत हनुमान।

बन गए तेरी धन फॉर्म ऑफ बॉन्ड विद इट लेकर मन एक तारा है नोच एक तारा एंड एक तारा इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट दे प्ले विद वन स्ट्रिंग दे समटाइम्स यू सी रोमिंग साधुस दे हैव लुक्स लाइक समथिंग लाइक अ सितार एंड दे हैव इट ऑन देयर दे स्ट्रिंग लाइक दिस दिस वाले एक तारा है हैव वन स्ट्रिंग सो वी हैव एक तारा वन ब्रेथ दैट गोज इन एंड आउट सो द ब्रेथ इज लाइक द एक तारा ब्रेथ दैट इज गोइंग इनसाइड अप In and out of us, the body is like the instrument, and the ektara is like the breath that goes in and out. So that's like the one string that, that one string, when he says Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. So he says use that like that.